मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ, तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

खेल सब हरतनी, सालाह हो सच सब ऊपर हरतनी। सब आए हुक्म खसमा हो, हुक्म सब वर्तनी, सच साहेब साचा खेल सब हरतनी।

हाथ फलगा, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रत पलगा।

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वडभागी

सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जा गाई एक दान मंगै नानक बेचारा हर दा सन्दास कराई।

तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई। सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई। नानक सब किश आपे करता आप करावै सोई। सच्चे भगत सो है दरबार।

दिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए, हर गुण गावहो नारी आन दिन भगत करहें गुर आ गए, सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द बस।

समहे रव रहे आसो प्रभ अंतर जामी राम, गुर शब्द रवै रव रहे आसो प्रभ मेरा स्वामी राम, प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, कट कट रवै आसोई गुरमत सच पाई।

पहला गुर वचनी मन सहज त्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख परम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

मन अभिमान कहत सुनत सभे सुख पावहि मानत पाहे निधान बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

ते शब्द बुझाई। जीवन मरण को संसार वेखै, बोहर ना मरे ना जम पेखै, कर ही मह सब कोट निधान, सतगुर दिखाए गया अभिमान, सद ही लागा सहज ध्यान, आन दिन गावै एको नाम।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बस हो वड भागनी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

दृष्ट दृष्टाय अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश कुशैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम।

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चुवै।

है, सब तृष्णा भुख गवाए, हरड़स पी संतोख हुआ, सच वसिया मन आए, सच त्याए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए, सच्चो दहद स्पष्ट।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग मनुआ गीद नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

पछाणे। ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिसते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि

फलत फलत होहे दोहें सुहेले। अचर्ज पुरख त्याओ रहाव, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप, बैरी सब होव हमीत, निर्मल तेरा होवै चीत। सब ते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म,

चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ध्याया आनंद हर रूप दिखाया तिस ही की ओट सजीव जाके कीने है जीव सिमरत।

खिन मह वेश करह नटुआ ज्यों मो पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन भया करह बिकार विथार कन्हेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत ले वह रोग गया। सुख संपत कौ आवत देखें साकत मानं अभिमान पया।

ये कुटंब छोड़ पर पवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

संत हो, सतगुर खेप निवाही संत हो, हर नाम लाहा दास कौ दिया, सगली त्रिशन उलाही संत हो। रहाओ।

अनंत तरहा, नाम नरहर निदान जिनकै, रस भोग एक नारायणा, रस रूप रंग अनंत बीठल, सास सास त्यायणा।

संत प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोए जियो सदा सदा हर सिमरिए जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे।

चारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइय पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइय नानक बोले।

इहो भेख निवासी किस वखर के तुम वणजारे क्यों कर साथ लंघावहो पारे। गुरमुख खोजत भए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर।

सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथी अले, जित तरिय भवजल संसारो, त्रैसत अंगुल वाई कहिय, तिस कहो कवन अधा।

नानक आए से प्रवान पहे जे सगले कुल तारेन महला तीजा। गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करें, ओए पहाणे चलन अपने।

शब्द रवै सब घट मेरे हों सबना अंदर जिस है खुआई तिस कौन कहे जिस है दिखाला वाटड़ी तिस है पुलावै कौन जिस है पुलाई पंध सिर तिस है दिखावै कौन महला पहला।

पौड़ी मनमुख मोगुबार है दूजे भाए बोले दूजे भाए सदा दुख है नित नीर विरोले गुरमुख नाम ते आई है माथ तत कढ़ोले अंतर प्रगास।

पंजवां, कबीरा हमरा को नहीं, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हूं के ना है, जिन्हें हो रचन रचाया, तिस ही माहे समाहे पौड़ी, सफल्यो बिरख सुहा।

चौथा सब सिद्ध साधक मुन जना मन भावनी हर त्यायो अपरंपर पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हर अलख।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावै नाल न चली सतगुर।

आयो जेह कर्म है तुद रहना बसना सो कर चीत ना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसारयो एक निमख नहीं।

नारी जहै दूजै भरम भुलाई है। गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

गुरुमुख सुरत समाई हे। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगाह पेंधे, गुरुमुख सुरत समाई।

मन मुख दाजै पढ़ पढ़ पाही, अमृत नाम गुरु वडदाना, नाम जप हो सुख सारा है, सतगुर तुठा सच दृढ़ाए।

यह भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मार गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन

एक बह सुनहे सुनावह काना, अजगर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत ना पाया, करहे विभूत।

मन हाथी पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ गुर शब्द महारस पाया कुदरत देख रहे मन मानिया गुर शब्द ही

अंत सब किछ सूझै अज्ञानी अंध कमाई हे। मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई। गुरमुख नाम

ना गुरमुख हो गए सो सच कमावे साची करनी सारी है कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हो मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हो मैं मार निवारी है सच लगे।

गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा है, गुरमुख ना

नवनज नाम बसया कट अंतर छोड़िया माया कालाहा हे। रैयत राजे दुर्मत दोई बिन सतगुर सेवे एक ना होई एक ते आयन

है, आन दिन गुण रव है दिन राती, आन दिन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरण सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा भाओ चुकाया, हर जियो मिले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, आन दिन सदा

कुसंगत बह है सदा दुख पावह दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार ना पाए कोई। सहजे गुण रव है दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उठ है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया सुध है।

गुण निदान मन तन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पव्या, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

उपदेश तुट है सब बंधन, यो परम मोह पर जालना। जहरा खै सोई सुख थाना, सहजे होए सोई पलमाना।

गर्भ अगन मह जिन्हें उबारिया रतत किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।

हर अगम अगाधा निःचल नाम निधान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा।

शब्द बिन कबहू न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तार तू तारी। बहरे करन अकल पई होची शब्द सहज नहीं बूझया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

खोई, बहले पेख पवह दिन राती, हों मैं रोग न जाई। पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है।

बाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़े

जाने। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने, शब्दे मेल मिलाया रहाउ। आन दिन भगत कर है दिन राती, दुविधा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते, सच बसिया मन सोई। मूर्ख दुविधा पढ़ है मूल।

नानक हरण आक्ष नहीं बिदारिया, अंध है दर की खबर ना पाई। नानक हरण आक्ष नहीं बिदारिया, अंध है डर की खबर ना पाई। राग पहरों महला चौथा, चौपदे कर पहला।

सतसंगत साध धूर मुख परी इशनान कियो अठसठ सुरसरी। हम मूर्ख को हर कृपा करी जन नानक तारियो तारण हरी। पैरों महला चौथा सो कृत करनी सार जप माली हृदय फेर चले तुद नाली। हर हर नाम जप हो बनवाली कर कृपा मिल हो सतसंगत टूट गई माया जम जाली। रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली विच काया नगर लद्धा हर पाली।

तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध

रहाओ। गुरसिख हर बोलहो हर गावहो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर के रा, सो जन पावे हर सुख घणे।

तप्त बुझी पूर्ण सवे आसा, मिटे अंधेर भय प्रगासा, अनहद शब्द अचर्ज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद, जा कौ प्रगट भय गोपाल, ता कै दर्शन सदा निहाल।

जिस नाम हृदय तिस वड परवार, नाम बिना मन मुख गावार। जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन।